परे की राखो शर्मा। कभी बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दै मोहे बचावो।

त्रास निवरी है। हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख लियो मोय राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे।

वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा।

दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो, रित सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास वै सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा।

महाराज कहते ने इस करके भाई पारू जुलका जिहड़ा है वह हंस नहीं बल्कि हंस तो भी उपर परमहंस है। तो धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच चार तरह के जीव जिहड़े ने ना उन्हां दा जिक्र किया गया। एक है हंस ते दूजा उहदे पैरल बाबा जी ने बगुले की गल की है। एक है कां उहदे बराबर बाबा जी ने कोयल की गल की है। हुण कां ते कोयल जिहड़ा है उन्हां दोहां दे रंग इको जे ने पर दोहां दे सुभाअ दे विच बड़ा वड्डा फर्क है। हंस ते बंगला दोहां दे रंग सफेद हन पर दोहां दी बिरती विच दोहां दे सुभाअ विच जिहड़ा है वह जमीन ते आसमान का फर्क है। तो महाराज बाणी विच एक थां उत्ते ऐसा भी बचन रखते ने कि वह बंदा जिहड़ा अंदरों अन्ना है, अंदरों अन्ने का अर्थ है उन्हों अंदरों कोई सोझी नहीं, अंदर कोई विवेक नहीं, अंदर कोई समझ नहीं है। तो जिहड़ा अंदरों अन्ना होवे वह जबान तो कुछ भी गावेगा तो वह कूड़ा होगा, वह झूठा होगा। जिहदे अंदर सोझी होगी ना गाव्या भी उहदा प्रवान हुंदा। मेरी इस बेनती नूं समझ लिओ। जदों असीं गल करदे हां गुरु दे कोल आ के ते

सतगुर की जिसनु मत आवै सो सतगुर महे समाना। ये बाणी जो जीऊ जाने तैसे अंतर रवे हर नामा। बाणी बिरलो बचार सी जे को गुरमुख होए, यह बाणी महापुरख की निजकर वासा होए। बाणी गुरु गुरु है।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया मुक्ते गुर अनु भजाया जब नख सिख ए मन चीना तब अंतर मजन

मन निर्मल अंदर भक्ति राता भगत करे हर पावने ओम वारी जो वारी हर भगत कर अवरा भगत करावने तिन्ना भगजनम को सद नमस्कार कीजे जो अंदर हर गुण गावने रहाओ पापे करता कारण कराए जित पावे ते कारे लाए पूरे पागुर सेवा होवे गुर सेवा ते सुख पावने मर मर जीवे ता किशो ना किशो पाए मर मर जीवे ता किश पाए गुर प्रसादे मन वसाए सदा मोत हर मन वसाए सहजे सह समावने बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए दसंतर पाए दे पाए खवाए।

मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, और क्या करे कीते क्या होई। नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावणिया। बाज महला तीजा इस गुफा

कृपा मानव सामया गुर ज्ञान हंसा नेत्री पाया अंतर चान अज्ञान देर गवाया ज्योति ज्योत मिली मन मानया हरदा सोभा पावनया शरीर पारण को बार जाए नाम न लय बहुत विकार दुख पाए मन मोहंद सूजे नाही फिर कर आए गुरमत पावनया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखे होमे मैल जाए वह सोतान सद हर गुण गावे सच्चे शब्द समावनया नौदर ठाके ठाव हाए दसवें निकर वासा पाए ओथे अनहद शब्द वजे दाते गुरबदी शब्द सुनावनया बिन शब्द अंतरा नेरा ना वस्त लहे ना चूके फेरा सतगुरु हथ कुंजी हो।

मन मुख सदा बग मैला हुमे मल लाई इशनान करे पर मैल ना जाए जीवित मरे गुर शब्द उचारे हुमे मैल चुकावड़िया रतन पदार्थ गुरते पाया पूरे सदगुर शब्द सुनाए।

तन परम पलानी दूजे लागे फिर पहितानी हलद पलद पूरे सुख पाया पूरे हलद पलद दोवें गवाए भेड़िए तन परम पलानी दूजे लागे फिर पछुतानी हलद पलद दोवें गवाए सुपने सुख न पावणिया भेड़िए तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखे नाले फिर कैसा अज रहे रंग राती शब्द सिंगार बना मनिया सफल जन जन सतगुर पाया दूजा पाओ गुर शब्द जलाया एको राव रिया कट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवै सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मन मुख नाम चित न आवै जिनसे साजी सोई जाने आपे मिले शब्द पछाने नानक ना मिलिया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लिखा बनिया बाज महला चौथा आद पुर परंपरे आपे आपे तापे था पो तापे सामे वरते एको सोई दो सुगम सोभा पावणिया हों वारी ज्यो वारी निरंकारी नाम ते आवणिया ਇਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਕੜ ਕੜ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮਹਲ ਲਖਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਤੁਰਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਸਿਜਣਹਾਰਾ

जिन को आप लिखत तुर पाई, नानक नाम मिले पो पन्यन, गुर शब्दी सुख पावन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार जो सात संत जी अमृत वेले तो सजे दीवाना दी हाजरियां भरिया ने, सो सरबत दे भले जी नेतन अनुसार जो सहज पाठ रंभ ने बाण दे पाठ सुन कीते ने, गुरु कृपा करे आप जी सब नूं चढ़दी हुई। अज मूल नानक शाही कैलेंडर दे मुताबक संग्राम दा दिहाड़ा अस्सू दा महीना आरंभ हुंदा, तो सतगुरु ने जो इन्हां महीनों के जो उपदेश अपनी बारे

प्रीतम चरणी जो लगा तिनके निर्मल सोए। नानक की ही प्रभ बिनती रमलो प्रभ तोए, वैसा सहावा तान गए जा संत भेटे हर सोए। हर जे जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब नवाना, हर सज्जन दावन लगे आ किसे न दे ही बाना। माणक मोती ना प्रभ हुन लगे ना ही सन, रंग सबे नारायणे जेते मन पवन। जो अर लोड़े सो करे सोई जी करान, जो प्रभ कीते आपने सही कही है तंद। आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रवान, साधु संग प्रापते नानक रंग मनंद। हर जे डंगीला तिस तानी जिसके पाप मतंद, असार्थ बंदा तिस लगे हर नाम न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मन संधि आस, दोए पाए वगुची है गल पई सजम की पास। जिहा बीजे सूलन है मथे जो लगे आस, रैन ब्याणी पहितानी उड़ जली गई नरास। जिनको साधु पेठी है सोधर गए होए कलाज, पर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बैं दो जा खोदई नाने की अरदास। असाढ़ संदा तिस लगे जिस मन हर चरण वास, सावन सरसी कामणी चरण कौन स्यों प्यार। माता रता सच रंग एको नाम आधार, विख्या रंग कुड़ावेया दिसन सबे सार। हर अमृत बूंद सहावणी मिल साधु पीवन हार, वाण तिण प्रभ संग मोलिया समरल पुरख अपार। हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावण हार, जिनी सखी है प्रपाया हों तिनके सब बलहार। नानक हर जी मया कर शब्द सुवारण हार, सावण तिना सुहागणी जिन राम नाम और

मन तन प्यार दर्शन गानी कोई आन मलावे माए संत साहे प्रेम गाय और दिन के लागा पाए वेण प्रभ क्यों सो पाई है दूजे नाही जाए जिन्हें जाख्या प्रेम रस सह त्रिवत रहे अगाए आप त्याग बेनती करे लिहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मिलाई है से बिछड़ कते ना जाए प्रावण दो जा को नहीं ना

सोबा क्या गणी जैसा है मैं लड़िया तन मोल मोल आराम से हूँ संसार से है लड़िया साज ना दे बारी से रहना के लड़िया ते दोखन का मुहूर्तर है से जम के वास पड़िया निरा व्या प्रव्या पड़ा से देसन नित खड़िया मैं दर्तन जवार ले लाल हर कण ते ना जड़िया नानक बांसे धूप ते प्रसर नहीं दर पड़िया मंगल परा बेरा दना बोड़ न जन मड़िया भोग तकार न व्यापाई कंठ मिलिया हर ना मन बेदया चरण हर बहन दर्शन लगड़ा साव ओड गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाओ बिखिया पो न सके मिल साधु गुंगा जय देव जी तै मिली सची प्री संभाल कर गया लेनी पार ब्रह्म बोण विछड़िया बार जाओ लख बेरिया हर सजन हक मगा शरम पई नारायण नानक दर पया ओ सहमदा सर्व सो जे बख्शे वे परवार।

जिने जाकिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए आप त्याग बिनती करे यो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मिलाईया से विछड़ कते न जाए प्रावण दूजा को ने नानक हर सुनाए असू सुख।

किसे न जाना देखे चौंका कड्डी कार उपर आए बैठे कुड़े यार मत बटे वन साडा फिटे तन फिटे फिट करेन मन जूठे छुरी परेन कहो नानक सच ते आई सच होवे ता सच पाइए।

0: प्यारा एक ख्याल बाणी विच प्रगट कीता कह के समाप्ति करा। गुरुदेव कहिंदे ने भी ये ख्याल रखो, मन समझावन कारने कछुक पढ़ी है ज्ञान। मन नूं बोध देण लई ज्ञान दा होना बड़ा जरूरी है, सोची दा होना बड़ा जरूरी है। तो गुरु दे दरबार विच गुरु दे विचारां द्वारा असी अपने मन नूं सोची देनी है। तो ये सी शब्द दे अर्थ जो अज दा पावन मुखवाक है। सारी संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह। हार्दिक धन्नवाद भाई साहिब गुरशरण सिंह जी दा जिन्हां ने अज ते पावन पितर गुरनामे दी कथा विचार साडे नाल सांझी कीती है। सतगुरु इन्हां नूं चढ़ दियां गल्लां बख्शन, सवेरे शाम सेवा कर रहे ने। आप भी हाजरी अंबर के लाज प्राप्त करिया करो जी। सो अज तो जो 20 तरीक नूं नवे गुरुद्वारे की सारी का नींह पत्थर रखा जा रहा, और ये प्रोग्राम ऐतवार का पंजा प्यारां दी अगवाई बैठे सारा प्रोग्राम जिहड़ा होएगा, जिस विच कुछ बुलारे कत जथे ढाडी वारां इतिहास की सेवा 23 तरीक तक लगातार इस तरह होएगी। अज तो ये प्रोग्राम आरंभ हो जाने ने। भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी हजूरी लागी जत्था दरबार साहब अमृतसर वो भी पहुँच चुके हैं। उन्होंने अज शाम 7:30-8:30 बजे तक कीर्तन करना। सवेर का समा आप जी ने दस दिता जाएगा, और 23 तरीक तक लगातार दीवान सरणी ने आप जी ने बेनती हाजरियां भरनी है। और नाल नाल ये भी बेनती है कि गुरुद्वारा साहब की असारी विच भी आप सहयोग बख्शो, अपने दसवंध माया सफल करो, क्योंकि ये जो इमारत बन रही है आने वाली साड़ियां पीढ़ियां वास्ते एक जड़ा है वो रोल मॉडल गुरुद्वारा साहब जो बनेगा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका दे विच शायद हो सकता ये अपनी टाइप का आप ही पहला गुरुद्वारा होवे। सो आपां इहदे विच सहयोग बख्शणा तां कि आपां इस नूं आरंभिक कार्य नूं असीं संपूर्ण कर सकीए आपके सहयोग के नाल, क्योंकि आप जी ने बहुत सहयोग बख्शिया। यह गुरद्वारा साहब 1996-97 इतने आरंभ किया गया से। इस बिल्डिंग की जी शुरुआत से 2003 में आपने इतने उद्घाटन किया, और उस दिन तो लैके आज तक दास सत्ते प्रबंधक सेवादार आप दे नाल सेवा विच सेवा कर रहे हैं, और आप जी ने भी बहुत सहयोग बख्शिया, क्योंकि दास ने तकरीबन उस दिन तो लैके हूँ तक आप संगत ने बड़ा मान ते सत्कार दिता, और 2003 तो लैके हूँ तक आप संगत की सेवा विच है। आने वाले समय में भी आप दे सहयोग का आस रखते हैं कि तुम सहयोग बख्शोगे। तो नाल नाल ये भी बेनती है कि ये तुहाडी ही सेवा, तुहाडी सेवा का सदका ही ये गुरुद्वारा साहब जिहड़ा ना ये गुरमुख वाला नवा आरंभ होने लगा, क्योंकि आपका एक एक पैनी जिहड़ी है वो गुरमुख प्यारो इस लेखे लग रही है। सो इस करके बेनती आप जी नूं कि अपनियां बच्चियां नूं भी मैं तो सारे बेनती कई बार करदा गुरमुख प्यारो कि आपां फार्मां वल ते आपां पेंड हालां वल व्याहां शादियां लई बच्चियां नूं नां लैके जाइए, क्योंकि उत्थों दा ते जिहड़ा उहनां दा ठीक है। इत्थे हर रोज़ तकरीबन 400 प्राणी हर रोज़ लंगर छकदा, वो तुहाडी एक एक पैनी जिहड़ी है वो किसी दे मूँह च पैंदी है। सो आपां बच्चियां नूं इन्हां घरां नाल जोड़ना तां कि आउण वाले समें च बच्चे इन्हां घरां दी सेवा जिद्दां गुरु घरां दी सेवा विच साडा सहयोग बख्शण, क्योंकि ये नौजवान पीढ़ी वास्ते ही सारा कुछ बन रहा आने वाली जनरेशन वास्ते। आप जी ने बेनती है जरूर ये सहयोग बख्शो, जो भी तिल फुल पेटा करने जाओ बड़ी खुशी ने कर सो। अज अस्सू का महीना भी आरंभ हों, बहुत बहुत आप सतगुरु कृपा कर सुख नाम का बतीत हो। आओ भाई साहब भाई परमिंदर सिंह जी के पासों सर्व करिए कीर्तन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सूद
1: बिरद प्याओ पर साख सैन
0: हो गया प्याओ बैठ को देन
1: ये निर्गुण गुण कछु न बुझे
0: बख्श लियो तो नानक सीजे
1: जे प्रसाद तारे ऊपर सुख बसे
0: सुत प्रहाद बीत में

0: परमेश्वर
1: राम ज्ञानी की कीमत नाए
0: राम ज्ञानी के सकल मन माए
1: राम ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: राम ज्ञानी को सदा आदेश
1: राम ज्ञानी का कथा न जाए अथा कर
0: राम ज्ञानी सर्व का ठाकर
1: राम ज्ञानी कीमत कौन बखाने
0: राम ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: राम ज्ञानी का अंत न पार
0: नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: राम ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
0: राम ज्ञानी सजीवे नहीं मरता
1: राम ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता
0: राम ज्ञानी पूर्ण

0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काग जल,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब को चले।

0: संत का निंदक रायते हीन संत के निंदको सर्व रोग संत की निंदा दुख में दुख
1: संत पावेता उसका भी होए भोग
0: संत का दुखी सदा पवित्र
1: संत का दुखी किसे का नहीं मिलता
0: संत के दुखी को डान लागे
1: संत के

संत के दुख ध्यान परमाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, संत के दुखी को अवर न राखन हारे, संत का दुखी ओ बिल्लाए,

0: सब घर तिस्क्यो करने हार,
1: सदा तिस्को नमस्कार।
0: प्रभु की उस्तत करो दिन रात, सब कुछ वरते तिसका किया,
1: जैसा करे तैसा

अविनाशी नाही किस खंड अलखा पीव पुरख परताप जिन प्रजाता सुशोभावंत प्रभु के सेवक सगले उदाहरण आपे मेल कृपाल उनकी सेवा सोई लागे नाम जपत पावे विश्राम जो कुछ करे सुप्रभ

0: सगल की चिंता जिस मन माहे
1: कोई नाहे।
0: रे मन मेरे सदा हर जाप अपन किया कछु न होए
1: जैसो प्राणी लोचक होए
0: जैसे बेंती।

0: अंधकार दीपक परगास जो महा ध्यान में मार्ग पावे
1: साधु संग मिल प्रगटावे
0: तन संतन के बाचो दूर मन मूर्ख काहे बिलाइए दुख सुख प्राप्त देवन हार जो कुछ करे सोई सुख मान
1: काहे फिरे अजान
0: कौन बसताई तेरे संग राम नाम जब हृदय माहे
1: कर जाए

अपनी जोत तरे अपन चलता कर निहार अब नासी सुखी अपने आसन जब पूर्ण करता प्रभु सोए जब अवगत गोचर प्रवेका जब नाथ रंजन गोचर अगा दे

है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे।